0: रेतना सुनी कोवडिक नुग छामडी लखती अलवार ग जन थरकलंग वी खपसिगला तो पास को नुग दोनन्या मुंदे यन दोनन द ना चोयंग तेरंग ग कव सर्वी थातुंग गरकलम द जेनी यंग पांचलान छामडी लखती कर साम खंग ग टुगु योना तिसु ताम जे इंचु कते वार्क सेंग लेसन थातुंग खंग दे सिंग खंग ग टुगु मेना ना छि श्यामनी ना तेरंग ग कोवडिक तारत दोनन द ना बासो ग सेनिन त Gujiyin. Ya, Chukpa Dimo.
1: Oh, Dimo, Gujiyinpa Dimo.
0: Ya, Dimo, Dimo.
1: Tari Tami Lakshi Chidara.
0: Samdi Lakshi Lawa Rinzan Tharkalangwi Khabshikala Thopa Sene Dungan Zingo.
1: Oh, ya, ya. Tad Khuma Ma Chungwa Mungtun Di Bana Pinji Panya Gujiyinpa Khabshikala.
0: やつしちで今後でしまないようにさんとじゃもんでちゃんでちちとたたようにたしもんでずくそとたね。いや、こてんち。てがわなてじぽにゃ。にゃんごどにゃんけんよわしゃな。あれ。てがりわかかんごく。りわかかみかたんおりわこたちこごりわしにりしゃなしこや。あ、りわかかまなんで。あ、ろ、ろちちんじゃがもんでずくりまた。もんのさわ。
1: Lowa
0: chirchung chapka.

या तो कुना बात है ना तारीख लेसन दे शिक्षित रेवा शाल सांकुन के टोपो यो ना तारों रेवा खचिक शाचु को कोरकुतो के कोरकुतांजन चो का ची के तना तेरंग लेसन दे के सामने कोटिगुनु लवार के जंतर कलंग भी खबशिकला तो पास गुनु दोन दयिन यं निरकुप से लेसन था तुम खंडे सिंकिंग के टोपो में ना आती सामने चेचक सेन्यंत लवार के जंतर के लरकल न्यामुंद गुजुयल